0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: कहते हैं कि मुस्कुराहट बेशकीमती शय है, जिसके पास ये ना हो या जो इसे अपनों में बांट ना सके तो वो दुनिया का कंजूस तरीन इंसान कहलाता है। और मैं तो ये मानती हूँ कि इसी का दूसरा नाम जिंदा दिली है, क्योंकि एक छोटी सी मुस्कान दिल जीत सकती है, साथ ही साथ अपनी आड़ में ढेरों गम भी छिपाए बैठी है। गमों के पहाड़ में हौसले की चट्टान है ये, और मोहब्बत का ही एक और नाम है ये।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। अगर कभी पलटोगे जिंदगी के ये पन्ने तो शायद आपकी आंखों से भी बरसातें होंगी। जी हाँ, यकीनन बरसातें होती हैं, पर सिर्फ उन लोगों की याद में जो अपनी जिंदगी को एक अलग परिभाषा देकर जाते हैं। हम आप जैसे ऑर्डिनरी लोग जो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अगर हम ये उम्मीद रखें कि कोई हमें भी याद करेगा हमारे जाने के बाद, बिल्कुल अनरियलिस्टिक और गलत एक्सपेक्टेशंस है। कोई ऐसा अगर हम चाहते हैं तो हमें पहले उसके काबिल बनना होगा।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं फिर भी जल रहे हैं लोग, न वफा न किरदार न उसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। वाकई में इन चंद लाइंस में आज की सच्चाई, द हार्श रियलिटी ऑफ टुडे सिनेरियोस हिडन। अंदर बहुत कुछ दफन है पर बाहर नजर नहीं आता, वो आज इसलिए क्योंकि मुखौटे जो लगा के घूमते हैं हम लोग। चले बातें तो होती रहेंगी, पहले एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक आपके अपने शो कल्चर।
2: मुझे

इससे पहले कि कुछ समझ आए, वक्त गुजर जाता है, जिंदगी बीत जाती है और हम तो सिर्फ यही कह पाते हैं कि पता ही नहीं चला। जीवन एक धारा सा कब बह निकला पता ही नहीं चला। क्या लिखूं मैं इन पन्नों पर जिन पर स्याही नहीं टिकती। मेरी कलम ने कब छोड़ा लिखना पता ही नहीं चला। दिन गुजरे रातें ढलती रही, मेरी सुबहों ने मेरी शामों से कब नाता जोड़ा पता ही नहीं चला। निराश नहीं

जिंदगी ने अजीब तरह से अजीब लेसन दिए हैं। लोगों को, उनकी सोच को, उनके जज्बात को बदलते हुए देखा है। रीजन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, पर सच्चाई ये है कि आजकल लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं। ये सच है कि आ जाता है शोहरत का असर। इंसान तो क्या, दरो दीवार बदल जाते हैं, और बेवफा बदले या ना बदले, वक्त आने पर वफादार बदल जाते हैं।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: What is life? जब ये सवाल पूछा एक 18 साल के यंग जेंटलमैन से तो जवाब आया कि जिंदगी कोई पार्किंग स्पेस नहीं, रेसिंग ट्रैक है। सो जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड डोंट लेट योर फेलियर स्टॉप यू। वेल, इजंट दैट अ वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच? इसलिए किसी और से नहीं, खुद से वादा करें कि ये सब रिजेक्शंस, फेलियर्स आपको रोक नहीं पाएंगे बढ़ने से। न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: जब हम किसी कामयाब इंसान की जिंदगी को देखते हैं, तो हमें सरफेस पर ऊपरी तह पर सिर्फ उनकी सक्सेस नजर आती है। उनकी मंजिल कामयाबी का वो सफर जो उन्होंने तय किया, जिसका हिस्सा मायूसियां और नाकामयाबियां भी थी, वो नहीं देख पाते। एजे क्रॉनन का नॉवल द स्टार्स लुक डाउन आज एक क्लासिक नॉवल माना जाता है, पर आपको पता है कि 22 बार इस नॉवल को रिजेक्ट किया गया। पब्लिशर्स ने 22 बार इसे छापने से मना कर दिया था। अब जरा सोचे कि अगर पहली बार ही रिजेक्ट होने पर एजे क्रॉनन ने हार मान ली होती, तो क्या वो कभी अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाते।

0: ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: आजकल का ट्रेंड ये है कि हम हर काम में इजी सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज ही गलत हैं हमारी। फॉर एग्जांपल, रिश्तों में वक्त और प्यार की बजाय हम पैसे और गिफ्ट देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम देने से तो आसान लगता है कि जाएं और बीवी बच्चों को महंगे गिफ्ट खरीद दें और ये प्रूव कर दें कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। पर ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। वेल, व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज्ड टू डू देन? वेल, आई विल डेफिनेटली शेयर आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर। स्टे ट्यून्ड टू 106.3 FM शो। आपका अपना है कल्चर ऑफ पंजाब, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय देव दातला।

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ।
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करने में ही भूल कर ली तो फिर वक्त और लाइफ दोनों वेस्ट कर दिए। कुछ लोगों का माइंड बस घूमता रहता है अराउंड 3 P's, पैसा, पावर एंड पोजेशंस। इनसे ऊपर उठकर सोच पाना उनके लिए शायद नामुमकिन है, पर ये सच्चाई नहीं है। और यकीन माने, जब ये भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब स्टेज ऐसी आ जाती है कि ना तो गया वक्त हाथ आता है और ना आगे कुछ नजर आता है।